दर के सटिए मुथु कफी के पाए फिका मूर्ख खिए पा सजाए महला पहला अंदरो झूठे पैजुबार दुनिया अंदर फैन अठ सठ तीरथ जे नावे त्रै नाही मैज जिन पट अंदर बाहर गुजरते।

जिस अंतर हृदय शुद्ध है तिस जन को सब नमस्कारी जिस अंदर नाम निदान है तिस जन को हम बलिहार।

जुगो जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझे रहवर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तनां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारियो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है अपने पावन चरण कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालियो जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तो सरवण करदियां हो वह चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे दोवे हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे आं। लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

0: फिर अगलियां पंक्तियां गुरु साहब ने उचारियां जी। अगलियां पंक्तियां च कहिंदे रतन गुरु का शब्द है। इथे रतना नहीं है जी, इथे नन्ने नूं औंकड़ लगी। रतन गुरु का शब्द है। हुण गुरु दे शब्द दी सार कौन जानेगा। हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा पालन जावे, कौन सार जानेगा। जिदे कोल सोझी है ते जिदे कोल सोझी नहीं, बग डड्डा पालन जावे वह डड्डियां पालनी जांदा है। उहदे कोल सोझी है नहीं। हुण जिहदे कोल सोझी है, गुरु साहब कहिंदे हीरा मोती चुगना, वह हीरे ते मोती चुग रहे। हुण इत्थे जदों भावअर्थ करांगे, गुरमुख और मनमुख, गुरमुख की गल करांगे, वह गुरु के शब्द रूपी रतन नूं विहाजदा है। गुरु का शब्द रूपी रतन इकट्ठा करता है। मनमुख की गल करांगे, वह गुरु के शब्द नूं नहीं, वह ते अजे भी बग डड्डा पालन जावे वाली हालत में ही तुरिया फिरदा है, क्योंकि उहदे कोल सार है नहीं, समझ है नहीं, सोझी है नहीं, ज्ञान है नहीं। इसलिए गुरु बाबा जी कह रहे, कहिंदे भाई रतन गुरु का शब्द है। जेड़ा रतन है वह गुरु का शब्द है, बुझ है, ओनू बुझदा ओ ही है, जानदा ओ ही है। बुझनहार वो जेड़ा समझण वाला सूझ वाला होवे, ओही इस समझ नूं धारण करदा, ओही इस नूं बुझदा। वह जिहदे कोल समझ है नहीं, वह जान नहीं सकिया। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया भाओ, आपे हीरा रतन आपे जिस नौ दे बुझाए, जिन्हू समझ देवे ओ ही जानदा है। ए थोड़ी भी जौहरी जेड़ा मर्जी उठ के बन जे, नहीं, जौहरी बनन वास्ते भी सिखना पैंदा है, परख जाननी पैंदी है। जिन्हों परख करनी आ जाए जोहरी ओ बनदा है। ते मालक कहिंदे ओ जिन्हों गुरु दे शब्द दी परख करनी आ जाए गुरमुख हो ही बनदा है। जिन्हों समझ आ जाए, पता लग जाए गुरु दा शब्द कीमती है, जिन्हों पता लग गया ओ गुरमुख बन गया, ते जिन्हों पता ना लग्या ओ मनमुख, मन दे वस होया, अग्ञानता वस होया, इस रतन दी सार तों अग्ञानी रह जाता है। उन्हों ज्ञान नहीं, उहदे कोल सोझी नहीं। रतना सार, रतन गुरु का शब्द है, बूझ है बूझण हार। ते दूजे पासे मूर्ख आप गणाएं दे, वह जेड़ा बूझण हार बन गया उन्हें ते जान लिया, पर दूजे पासे मालक कहिंदे कई मूर्ख भी ने भाई, ते जेड़े मूर्ख ने ओ आप गणाएं दे, उन्हां ने आपा भाव गणाया, वो आपे भाव नूं प्रगट करदे रहे। मूर्ख आप गणाएं दे, मर जम्मे है, वो मरदे ने जमदे ने होए खुआर, वो मर जम के खुआर हो जांदे। रतन गवा लिया ना, कीमती रतन हथों चले गया। जीवन रूपी रतन, गुरु दा शब्द रूपी रतन, जां इदां कह लो जदों जीवन दे अंदर हंसां वर्गी बिरती बनदी है, फिर गुरु दे शब्द रूपी रतन दी सार जानी जांदी है। ते जे हंसां वर्गी बिरती ना बने, फिर गुरु दे शब्द दी सार नहीं, फिर सोझी नहीं, फिर ते की बनदा है। फिर बाबा कबीर साहब कहिंदे ना, लोक जानै एक गीत है, ए तौ ब्रह्म विचार। इस गल नूं कोई विरला समझ सकिया भी यह गीत कोई नहीं, यह ते ब्रह्म दी विचार है, यह ते रब दे घर दी विचार है। जिन्हें सार जान ली उह कहिंदा ब्रह्म विचार, जिन्हें नहीं जानी उह कहिंदे लोक जानै यह गीत। यह ते गीत ही है बस, गुरु दा शब्द गीत नहीं है। गुरु दा शब्द गीत नहीं, गुरु दा शब्द ब्रह्म दी विचार है। बस ये पढ़न वाले कोल सोझी होनी चाहीदी है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਗੀਤ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ, ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੀ ਗਣਾਇਆ, ਆਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਹੋਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਆਰੀ ਵੱਸ ਹੋਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਔਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
1: ਨਾਨਕ ਰਤਨਾ ਸੋਲ ਹੈ ਜਿਸ

फिर अगलियां पंक्तियां गुरु साहब ने उचारियां, कहिंदे नानक रतना सो लहै। हे नानक जीओ, रतन नूं ओह हासिल करदा। लहै दा मतलब प्राप्त कर लैणा, हासिल कर लैणा। नानक रतना सो लहै जिस गुरमुख लगै प्यार। जिहदा गुरु दे राही प्रेम बन जे ना, रतना सोल है जीवन। इत्थे हुण इदां कह लो जी, गुरु साहब ने ना इत्थे गुरु दे शब्द रूपी रतन दी गल कीती। गुरबाणी जीवन रूपी जिंदगी नूं भी रतन कहिंदी है। जीवन साडा एक कीमती रतन है। जिन्ने इस जीवन रूपी रतन दी सार जानी है ना जी, ओही गुरु दे शब्द रूपी रतन नूं इकट्ठियां करदा है। ते जिन्ने अपने जीवन रूपी रतन दी सार नहीं जानी, ओदे कोल गुरु रूपी शब्द रूपी रतन भी है नहीं। इसलिए गुरु साहब ने कहा, कहिंदे नानक रतना सो लहै। हे नानक जीओ, ए रतन नूं हासिल ओह करदा है जिस गुरमुख लगै प्यार। जिहदा गुरु दे राही प्रेम बन जांदा है, प्यार बन गया। हुण जिहदा प्रेम बनिया उहने रतन हासिल कर लिया, ते जिहदा प्रेम बनिया ही नहीं, जिहदा प्यार बनिया ही नहीं, उहने हासिल की करना है, उहने प्राप्त की करना है? सार जानी कोई नहीं। हुण सुभाविक जिही गल है, जे आपां कच दा टुकड़ा ही समझी जावांगे ते कित्थे इकट्ठा कर लांगे जी, किवें इकट्ठियां कर लांगे? कीमती रतन होवे, कीमती रतन दा ते टुकड़ा नहीं छड़दा, उहदा ते टुकड़ा नहीं छड़दा। ते जे आपां सार ना जानीए, फिर कई वारी रतन भी छड़ जांदा, कई वारी रतन भी छड़ जांदा। हुण तुसीं वेखो, संसारक तौर ते सुने आ रहा है, उहदे कोल सोने दी सार है, सोजी है, और उहदी सोजी जिहड़ी ना जी, उह इन्नी क उहदे उत्ते प्रभावी है, इन्ना क उहदी सोजी उहदे ज्ञान ने उहनूं अपने अधीन कीता। कह लो उह जे अपनी दुकान दे उत्ते झाड़ू भी लाउंदा ते अंदर वल नूं लाउंदा वी किते कोई सोने दा किणका बाहर ना चला जाए। उहदे कोल सार है, उहदे कोल समझ है, परख है उहदे कोल। ते जिहदे कोल परख ना होवे, तो सारा कुछ ही हूंज वटदा। हुण रतन है, जिंदगी रूपी रतन है, जे सार सोझी होएगी संभालांगे, नहीं सोझी होएगी गवा देंगे, गवा रहे हैं। मालक जी ने जदों गुरबाणी राही सोझी दित्ती, ते सतगुरु जी ने यह कहा ना, भाई अपने जीवन दे मुल नूं समझ, जिंदगी दे मुल नूं समझ, किते गवा ना लई, गवा ना लई, इहदी कीमत नूं जाण। और इहदी कीमत नूं जाणदिआं होइआं सतगुरु जी इहनूं समझाउंदे, वेखी किते जवानी चली गई, बुढ़ेपा ना चलिया जाए, संभाल रहण गई, मत दिन पी जाए, पवर गए, बग बैठे आए, मुल समझ, कीमत समझ। फिर एक बचन पढ़ते हैं अपन, जिथे सतगुरु कहते, हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदला जाए, गवारे आओ। कादे च गवारे आ? रहण गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, एदे विच गवारे आओ। कीमत नहीं है, मुल नहीं समझिया। जे मुल समझदा फिर जीवन नूं एदां नहीं सी हूंजदा जिद्दां हूंज रहा है, फिर संभालदा, एक एक साह दा मुल संभालदा। हुण कई कई साह अपने अजाई गवाई जांदा है, सार नहीं है ना जी, सोझी नहीं है। जे सोझी होवे फिर संभाले, सोझी नहीं
ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਜਾਣ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਨਜਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਰਤਨ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਰਤਨਾ ਸੋ ਲਹਿ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਹਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਏ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਹਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ, ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਨਾਨਕ ਰਤਨਾ ਸੋ ਲਹਿ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਮੁੱਲ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਨਿਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸੋਚੀ, ਫਿਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਿਵਹਾਰ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਵਿਹਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਤੇ ਜਪਣਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਰਤਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਂਭਦਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਵੋ, ਇਸ ਰਤਨ ਦੀ

फिर मालक ने जी पौड़ी आरंभ की। धन गुरु रामदास पातशाह जी का वचन शलोक दोवे गुरु अमरदास साहब जी दे पौड़ी गुरु रामदास कहिंदे जिस अंतर हिरदा शुद्ध है जिदा अंदर शुद्ध हो गया हिरदा शुद्ध तिस जन कौ सब नमस्कारी कहिंदे उहदे चरणां च फिर नमस्कार है जिदा हिरदा शुद्ध है अंदरला अंतःकरण जिन्ने अपना आपा सवार लिया शुद्ध है साफ सुथरा निर्मल जीवन वाला सोहणे जीवन वाला बन जिन्हों आप सवार है मैं मिलिया सुख होए जे तू मेरा होए रहा सब जग तेरा होए। बाबा फरीद साहब कहिंदे आपा भाव जिन्हें सवार लिया उत्थे फिर सब जग तेरा होए तिस जन को सब नमस्कारी फिर उहदे चरणा च नमस्कार है किहदे चरणा च जिस अंतर हिरदा शुद्ध है जिहदे अंदर शुद्ध ही है पवित्रता निर्मलता ही है जिहदे अंदर जिथे गुरु ने आप सवारिया आप जिथे गुरु साहब ने शिंगारिया ना जिथे आप सवारिया आप शिंगारिया उत्थे तिस जन को सब नमस्कारी। एक बचन और पढ़ो हर मन तन वसिया सोई जय जय कार करे सब कोई गुर पूरे की वडियाई ताकि कीमत कहन ना जाई। हुण कोई बयान नहीं कर सकते मन ते तन विच वस गया मालक कहिंदे जय जयकार करे सब कोई और ये वडियाई मिली कित्थों है गुरपुरे की वडियाई ये वडियाई गुरु पूरे ने बख्शी है। अज इसे पौड़ी विच भी जिस अंतर हिरदा शुद्ध है तिस जन को सब नमस्कारी जिस अंदर नाम निधान है तिस जन को हौ बलिहारी कहिंदे मैं उस सेवक तो कुरबान जाना जिन्हें अपने अंदर नाम रूपी खजाना इकट्ठा कर लिया। जिस अंदर अंदर नाम निधान निधान मतलब खजाना नाम अमृत नाम परमेश्वर का चिंतन और जिन्हें अमृत रूपी नाम का खजाना इकट्ठा कर लिया सतगुरु कहिंदे मैं उस जन तो भी करो

जिस अंतर बुद्ध विवेक है, जिदे कोल विवेकता है, मत है जिदे कोल ना, विवेकी मत। जिस अंदर बुद्ध विवेक है, चंगे ते मंदे दी पहचान करके चंगे नू चुन लेना, पहचान करना नहीं, चंगे नू चुन लेना, ए विवेकता है। ते जिथे आपां कहीए चंगे ते मंदे दी पछाण भी है पर तुरिया फिर मंदे राह ते ही जांदा, उहनू किवें विवेकी कह दईए जी। विवेकी वह है जिहड़ा चंगे ते मंदे दी पहचान करके चंगे नू चुन लवे, वह विवेकी है। जिस अंदर बुद्ध विवेक है, हर नाम मुरारी, ते ओ अकाल पुरख परमेश्वर दा नाम जिहड़ा अपने हिरदे दे अंदर टकाई रखदा है, अपने हिरदे दे अंदर वसा के रखदा है। कहिंदे ओ उन्हां दा उन्हां कोल विवेकता है, उन्हां कोल सोझी है, सो सतगुर सभना का मित है। ओ गुरु फिर उन्हां सभना दा मित्र है, सब तिसह प्यारी, फिर सारे उन्हूं प्यारे ने, चंगे ने। गुरु दा किसे नाल वैर नहीं है।

सतगुर अंदरों निर्वैर है, गुरु हमेशा निर्वैर है, उथे वैर नहीं है। बस इन्ना सवार दा अपना ओ ही है, अपने आपे नू सवार दा ओ ही है जिन्हें गुरु दे दसे राह उत्ते तुरना सिख लिया। गुरु ते सूझी बख्शद है, तुरना ते असी आप है, तुरना असी आप है। गुरु सिर्फ सूझी बख्शेगा, गुरु समत देगा। गुरु ने दसना है चंगा ते मंदा राह केड़ा है। तुरना ते असी है ना जी, जिमें अध्यापक पढ़ाउंदा है समझाउंदा है, अगे पढ़ना ते विद्यार्थी ने आप है, मेहनत विद्यार्थी दी है। ते जे विद्यार्थी आखे भी मैं स्कूले आ गया जी, हुण इहतों अगे मैनूं डीएसपी तक तुसीं ही लैके जाना, बस मैं नहीं जे घरे जाके किताबां खोलणियां, मैं नहीं कोई कापी खोलदा, मैं नहीं तुहाडा सिखाया कुछ पढ़दा, पर मैनूं तुसीं डीएसपी लवा दिओ। हुण उत्थे अध्यापक की करे? अध्यापक तो यही कहेगा ना, पुत मैं ते तेनूं सिर्फ तुरना दस सकदा, सिखा सकदा, तुरना तू है। इसे तरह साहिब कह रहे, कहिंदे भाई ओ सतगुरु जेड़ा ना है सारिआं दा मित्र, सारे उन्हूं प्यारे ने, पर नाल अंदर विवेकता बुद्धि भी चाहीदी है जिहड़ी गुरु दे राहीं फिर सानूं सीधे मार्ग ते

सच्ची बानी संत साजन पय सरस पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हया पर पूरे बिनवंत नानकुर चरण लागे बाजे अनह तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनह तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर

उनका सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां दहर से आरे आई तो देख तेग फते बिरद की

राम से पौड़ी आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावान दर प्रवान करनी यात्रा मां सफल करनी

ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लिखते आए।

पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संत दी हाजरी।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦੇਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿੰਹ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨ ਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਹਿਤਾ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਵਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੌਂਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਿਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ
पवन चुगावे मन में सिमरन क्रिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा ब्रिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा ब्रिया राग अस महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यां वहीं तुद जी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाणा इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वही हर दया वही तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर त्याया जी तेनो टूटी जमकी फांसी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन कापो सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब ताप ही जप ही बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुझे आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुझे आपे सृष्ट सब उपाही जी तुझे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दहे सोई ओ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया
तुदया बिछोड़या आप मिलाया तू दरिया सब तुझी माहे तुझ में दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खे बिजोग मिल बिछोड़या संजोगी में जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा अवर ना कोए तू कर कर बेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े भाई रे निवासा पाणी पावक तिन्हे किया पंकजो मोह पग नहीं चाले हम देखा तहें डूबियले मान एक न जे तसमूड़ मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवंत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई वरा पतमानक देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मेल साध संगत भाजे केवल नाम स्रंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै राहो जब तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साध ना जन्य आहार राया कोहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्य आहार राया कोहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फते पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पाई अमरी करोहा देरछा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आभादे मही बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सवेरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना ध्याऊं जो वर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखा मार तारिये चुन चुन शतर हमारे मारी है आभाद मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लियो मोहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे
दीन बंदुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। धन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जौन काल सलोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सेवगण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो। कट कट गए अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी दे कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए दे दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा। जब आकर्क करतो कबहू, तुम मैं मिलत देहे धर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ विचारे। तुम सब ही ते रहते नरालम, जानत वेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद संभ। तक मूड़े उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कह सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनद भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूपस रूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा। अंड जेरा से तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी। कौ फूल राजा हवय बैठा, कहो सिमड भयो शंकर अकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपा, आजुगा स्वरूप स्वयंप। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बार असिख संगरो। दुष्ट जिदे उठवत उत्पत्ता, सकल मलेच करो रण गाता। जे आस तो जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न है। रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरियो, ताकि ताप तनक मैं हरे हो।
रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें सवारा, कल फांसती ताही ओबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो ओबारी। सर्व मोहो सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सभाए, बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो। सिरियस पान कृपा तुम री कर, मैं ना गए हो सब तो ही बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गए हो तो हारो द्वार। बहिं गहे की लाज अस, गोविंदास तोहा। सगल द्वार को छाड़ के, गए हो तो हारो द्वार। बहिं गहे की लाज अस, गोविंदास तोहा। राम कली महला तीजा, अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता वाया सहज सेती, मन मजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया। शब्द तंगावो हरी केरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब मिसारना। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गलना समृत स्वामी, सो क्यों मनो मिसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। सचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किसे है। जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावाए, नाम जिनके मन वसिया। वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब। क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा,

वाजे पंचवत कार सभाग्य कार सभाग्य शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तोर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागी कहे नानक तैसुख होआ तित घर अन्हद बाजे आनंद सुनहो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा परहुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्हाद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भरहुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्हाद तूरे मुंदामणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए बस्त जी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तीवा तन मन थी वे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

मल जनम जनम दीपट्टिये सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठियां सोही है सबना दा वैसा हो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठियां सोही है सबना दा वैसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवां घर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़े आओ अर वेद विचारे आओ निवल पयंगम सदे पंच जना स्यों संगना छुटक आओ अधिक अहमद बांधे पाठ पढ़े आओ अर वेद विचारे आओ निवल पयंगम सदे पंच जना स्यों संगना छुटक आओ अधिक अहमद बांधे प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर आओ स्वामी के द्वारे दीजय बुद्ध विका रहाओ मौन पयाओ कर पाती रहा नगण फिरयाओ बन माही तट तीरथ सब धरती भ्रमया दुविधा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बसयाओ सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दातारा अनबस्तर भूम बहु अर्पय नह मिलिय हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन डंडौत

पत्तु जिस बुरबल के का लहिना तेरो सेवक एह रंग माता पह कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन रत्ता हर कीरत साध संगत है सिर कर मन कै कर्मा को नानक तिस भयो परापतु।

भयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एहो मन रत्ता रहाओ दूजा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: पहला वार श्लोक का ना श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलेहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवा जिन मनुष्य देवते किए कतना लगी वार महला तू जा
1: जे सो चंदो गवे सुरचने हजार।

0: सचे तुधाखे लख करोड़ सचे सब तां सचे सब जो सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच तैन सच जो मर जमे सो कच नी कच महला पहला
1: वड्डी बड़ाई जा वड्डा नाम।

हो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवा। एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे बिना, एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास। एब पे आखना जापी

0: नानक भोजन पूरे पाक महला पहला।
1: कुरद सकृत सुनिए कुरद भाव सुखसार, कुरद पाताली आकाशी, कुरद सर्वे आकार, कुरद मेद पुराण कतेबा।

चंचल संग सगल बिदहारी, पस पंखी बिरख अस्थावर, बहुबिद जोन प्रमेओ अत पारी, खिन पल चसा नाम नहीं सिमरेओ, दीना नाथ प्राण पत सारी, खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी।

ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख है दे

औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत।

तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदप जिय तान प्रभ प्रा

सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पाओ सच सदा सच पाखांत सोए सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बोहै जिस सच संजम वर्त सच कब जा।

लाज जैती राखी लाज भगत फेर लाज की हर नाकस पारे कराज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी छीनत बस्तर दीन बोसाज सुदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुरु सो प्रसन्न काल जुग होए राखो दास पाठ की लाज।

Wein chillin chin perhlan firn sir Hudurava chatapae Vekhaloka seka jai rutiyan karan pure tal aap chad thartina Gavan gopiyan gavan kaan Gavan gopiyan gavan kaan Gavan sitara jiram Nirpav nirankar sachnam jaka kya sagal jahan सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ निरंज नाम चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार खुलू चरखा चक्की चक थल वरोले बतन

बंद्र मंत्र स्वय पय कृतन चे सब को नत्र झसे चले से लोए उड़ना जय सुगन होए नच

0: तीर्थ न व्यर्चा पूजा अगर बस बहका जोगी सुनत्याव नित्य लखनव करता सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मंत्र तो पूजे देने के विचार दे दे मंगे सर सगुना सो करे संसार चोरा जारा तय कूड़ेरा खराबा बेकार एक होंदा खा चले था तना पेका एका जल थल जिया पुरिया लोआ आकार एका कोई जखे सो तो है जाने तिना पी तेरी सार नान पकता पुख सलाह सच नाम अदा सदानंद रह दे राती गुणवंतिया पाछार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार कड़ भांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जलो पे पपड़ी चल चल पे व्यंग्या

हमें यह जाता है हमें कर्म कुमार हमें बदना फिफड़ ने पाए हमें कितु पजे कित संजमे जाए हमें यह हुक्म

0: अंड जेर उतपजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जनते पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन्नू पाया जग तिस जोहारी स्वास तिस तिस दीवाने पग नानक सचे ना बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लखनी के चंगई लख में प्रमाण लखत पिपति था सहजोग में बार लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख